हेलो नमस्कार और जी भाई दोस्तों, मैं आरजे टाइम सो आप सभी श्रोताओं का स्वागत कर रहा हूँ और आप सुन रहे हैं 100.7 पे FM जोए। आज रविवार का दिन है, पवित्र दिन कहेंगे आज को, और आज हम आपके लिए बहुत सारे मसीह भक्ति गीत लेके आए हैं। आरजे टाइम्स के साथ आपका समय रहने वाला है। हमारे पहले भागों में 10:10 तक मैं आपको मसीह भक्ति गीतें सुनाता जाऊंगा। खंड को शुरुआत करने से पहले आप सभी को यीशु मसीह के नाम से जय मसीह कहते हुए पहला गीत प्रस्तुत करने वाला हूँ। जितने भी लोग घर बैठे हमें सुन रहे हैं, किसी भी कारणवश यदि आप गिरजाघर नहीं पहुंच पा रहे हो तो चिंता मत कीजिए। आपके लिए यानी कि आपके पूरे वातावरण को मंगलमय यानी कि भक्तिमय बनाने के लिए आपके लिए मसीह भक्ति गीते लेके आए हैं। तो अधिक समय ना लेते हुए पहला मसीह भक्ति गीत जो भी आपके लिए मैं प्रस्तुत करने वाला हूँ, ये होगा आइजोल ईस्ट एरिया मसीह संगति गीत मंडली की ओर से गीत के बोल कुछ ना। और मैं फिर से एक बार आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूँ, यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो आपको पता है कि कौन से नंबर पर SMS करना है। तो पहला गीत सुनने वाले श्रोताओं, आप सभी के नाम।

कुछ ना मसीह भक्त गीत सुना था हमने, आइज ऑलवेज डेरिया मसीह संगति गीत मंडली की ओर से। तो इसी के साथ यहाँ पे अगला मसीह भक्त गीत सुनने से पहले मेरी दुआ थी, क्या लिखती है, मेरी तीखा निलवा लेजी मेरी मीखा मेरी निलव, ये हिंदी वाली मेरी, ठीक है, का दुआ ती थी नब्बी का निया का ती लो हिस दुआ ती ती रंगो थी जोना लुंगो वकलो थी ना। तो ये मेरी दुआ ती लिखते हैं इलो ती ती खा कर रहेगा वहीं चु इन खोम लो इन मिनोम निलेंग दो ना निमो बहुत बहुत शुक्रिया। पर यदि आप के पास या आपके नजदीक गिरजाघर है तो आप वहां पे जाइए, कोई बात नहीं, जब गिरजा खत्म होगा तो आप हमसे फिर से एक बार जुड़ पाएंगे। दुआती जी बहुत बहुत शुक्रिया का स्वयं जी याद कर थी मैम। ओ पीसी जसिका लिखते हैं खबेलम भी लम लो पर नु एस एम एस नि बोका लम लो थे एक बार गंसियर ले दोना भी ओ हेलो हेलो हेलो वर्ज अटेम्प्ट्स लम लो पर रंटिंग हार रंगता का लाओ अमले ला अमलो छु ट्रेन नु खा जोट्रो पथिया नी छि भाई हुन मन नो मो बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको भी और गई ओम वेट्रा परंतिया गई ओम नी हि का दु वक्लवा छंचु मी गन थेंग हिल तो हियन गन गाय थ्री ना मासे थेंग हिल गाय लो मी ते गन नी छु गन गाय फ गाय लो नी ओ बहुत बहुत शुक्रिया। फिर भी नंग माले इदिवती पुई ते तानो बहुत बहुत शुक्रिया। फिर से एक बार कितने शुक्रिया दे दिया मैंने आपको, एक दो तीन चार लगता है मैंने चार शुक्रिया दे दिया एक ही SMS पे जैसिका जी लो ले अंग से हो। तो अगला मसीह भक्ति गीत फिर से एक बार जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं हमें आरे लिए संदेश दिए हैं आप सभी के नाम प्रस्तुत करना चाहता हूँ। और क्लेम इन मिजोटोंगन सोई लैंग मोया पमोया सर खंडा मिलोंगाई थानी छो सील मंगतराइन गंते दोनों में तान ले pi tlani tan tipo kangon pani tan uluk tan ngai thaka tan gan tinga ora ka swani as all fms away so dasam na sat ka sa jurne wale srota ho aap sabhi ke main kabhi bhulta nahi yadi aap girja ghar nahi ja pa rahe ho to aapke liye aaj ka din aapke vatavaran ko bhakti mein banane ke liye agla mas se bhakti ke sunne wale hain hum ye hoga co swaram koir ki or se git ke bol chutkara aur git maine pehle kaha tha ki sir khan atrangen milunga ek lakshi na पमोया पिछलनी पसल ती दिखा रहा हूँ दिखाना चियंग आपके लिए और सुनने वाले श्रोताओं आप सभी के नाम।

सीओ सुवराम कोर की ओर से हमने सुना था छुटकारा मसीह भक्ति गीत। तो इसी के साथ यहाँ पे एक संदेश पढ़ने को आया है, किन का कहूँ, ये है हमारे दोस्त सिजत लिखते हैं और जटम्स चिब्बाई हुन मन दुम ले फोप मया तेरे आपको भी पथियन नी चिब्बाई थुम सी अल्बर्ट सी ओ मेरी दुआती लिखते हैं इस यम जेखा कश थियम ले चुवांग मिया नाग तेरे ये इस या हिंदी खान मिन रेल निमो रेल लो श्रीम श्रीम रेल कन फल लो चे मेरी दुआती कस इजो कचु बेकिन ते बुलहाय मनी चुवान इन कम फ्रॉम फ्रॉम रोगन तेनी चुवा चुन गन सवाई तान मिनो ट्रॉन्ग ट्राई सक्तोनिया जेलल जामा। बहुत दिनों के बाद इनसे फिर से एक बार जुड़ने का मौका मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये लिखते हैं, हेलो वार्ड्स टाइम्स नमस्ते गुड मॉर्निंग, आपको भी गुड मॉर्निंग मेरे दोस्त वंचु नगमा ngai sang ए ए पीसी जेसिका ले मुन पुते ने हरम लोटेन नो मन वति दो ने एम निया तरो हे अ बॉस बर हे अरे वंग फंग मयंग तिन गे गंति दो ने वंचु kan til bol ga dei do da di mo pu an sio so me ro ron ti ne kan bol na sa vi ong i playlist le duty pu ite ne nin tan zo ram ri mo fm zo wa za point pasari ngai tla tu te ta no duty ne mo le bahut bahut shukriya aur yahan pe kin ka sms aaya hai main dekhne wala hu kan lo ngai tla i play le tur khai tan kan lo thlang nga le heo hai chu sir kan lama trang ani mo pitlani bahut bahut shukriya hame sandesh dene ke liye lo tu kan trela cha ni hi vai khatna nin ka khria sms listeners the po khan in lo chin che do neo pitlani sir kan lama trang in listeners third kan ne ya kan lo welcome cha fm zoiza point pasaria aur aapke saath pamoya tan si lu tu kan kan thansak le do na ni morris lr kyang te aap thora intezar kijiyega apne sandesh ke liye kyunki main aapke liye prastut karne wala hu phir se ek bar yahan pe kin ka geet prastut kariye main soch raha हाँ था तो यहाँ पे चिंग अवेंग बियल मसी संगति। जी हाँ, मैं आपके लिए प्रस्तुत करने वाला हूँ और गीत के बोल तेरे पास।

तो दोस्तों, छिंगवेंग बियाल मसीह संगति गा रहे थे तेरे पास यसुआ। तो इसी के साथ अगला मसीह भक्ति गीत सुनने से पहले जितने भी संदेश आए हैं मैं फिर से एक बार फटाफट पढ़ के आपको सुनाऊंगा। और उससे पहले नुटलनी ते खान फीडबैक ते हम लोग पहले आराम से एंगे तो ना इन गई थाक इन ला इन लंग गई थाक ते खा तमो इन ती एम ती ते तमो ए ते पो खान लो एस एम एस से लो वम वी वोंग। और अगला एस एम एस में पढ़ने वाला हूँ। बहुत दिनों के बाद फिर से इनको इनसे जुड़ने का मौका मिल रहा है। मॉरिस क्या लिखते हैं एल आर क्यांग ते पोकानी ही कन सेक्रेटरी तंग कन असिस्टेंट आनी है ओ कन कन का शांतिर कन तिदोन ये गुड मॉर्निंग कन वाइन तंग खात वे बहुत बहुत शुक्रिया संदेश देने के लिए मेरे दोस्त आर जो टेम सेंग पोचू नि से प्ले लेट वर्ज़ों जो ते जो ओ एफ एम गाइट लेट ते तान कन लाने चुवन वाइन हुन छत्तकान मन मंग शो दूरें जो ओ गाइट लेट वो जो ते दू सकना सांग बेर का लान वेक पोका चेवले मेरे दोस्त आपको भी शुभ दिन दिचुन गुड डे ती ना ओ लो फ्र थियम ले लवंग ती खा लोम खा मया ए तो किंचु थो कहया का इनसे मन नो लो इनसे मंगाय लो रे रंग मेरी दुआ ती आपको गिरजा घर जाने के लिए किसी के लिए सच ने सवरने की जरूरत नहीं है। ठीक है इन सीएम ती ते इन चे ती ते खा गाय लो रे रंग कन नी ना गंगा पथिया माइन लन का पोई मो पर थिन लुंग का पोई मो ओ नंबर वन आचुन और आगे लिखते हैं बाका वर्ल्ड कप फीवर मो फ्रांस चक्का लोम दोन मारिया पोर्चुगल गन ला चक जोई नुओम तखेन इन रिंगोत तथेने बहुत बहुत शुक्रिया फाइनल आ कई दिन तुम गए का पैसे या चुआने ट्रॉफी गन ती दोनों में नो मो चैंपियन नो मो इका गन पोल गन टीम तुम गए ने गो लो रिस्पोट ला गन हों दोन ने तो अगला मसी भक्ति गीत में आपके लिए प्रस्तुत करने वाला हूँ दयानिधि राव की ओर से। जी हाँ ये गीत होगा स्तुति प्रशंसा।

तो इसी के साथ दोस्तों अगला मसीह भक्ति गीत जो होगा हमारे लिए, जी हाँ अभी के लिए इस भागों के लिए अंतिम गीत होने वाला है, पर चिंता मत कीजिए मैं आपसे फिर से एक बार जुड़ने वाला हूँ। कितने बजे? 10:50 पर डार्स हमने मिनट सुनगा गलो लेत लेगा, तब तक सुनते रहेगा आकाशवाणी एफ एम 107.7। और जाने से पहले यहाँ पे जितने भी SMS बचे हैं फिर से एक बार मैं पढ़ के सुनाने वाला हूँ। जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं आप सभी को दिल से धन्यवाद कहते हुए यहाँ पे हमारी दोस्त कोवेला मिशलामलो परनुओ SMS निया तुंगे निया ओ ओ मेरी दुआती निरीस दिके पीसी जसिका SMS निये निये और जो टर्म्स लामलो पापा इंचु अलुम ले दोन ले मैं लव दिवती वागिन कोलुम का गंदू नहीं लोगे। ओ हितेंद्र दास मेरे दोस्त लिखते हैं गुड मॉर्निंग आरजी जी, आपको भी गुड मॉर्निंग मेरे दोस्त हितेंद्र दास स्टेट आसाम। और मेरे भाई उना पा वी कुंग ते SMS सीआर तो रोम लो वन लो बम ट्रेन तके रानी ते छे वथोन ट्रेन बो गन ते तुन आई हन और जे उना पा तुन लाइ कन वे इन द कार्ड वे के कलो बॉय वे द ट्रेन बुक ने इन टन फॉर हर ट्रेन कप मे वर्ल्ड कप निन से येलो से छि यंग ए ए जु पुर्तगाल ले अर्जेंटीना लो ला लीर कट्रन ते ने ओ कंट्री थियम हाले नंग छु मी ट्रन लो लम पिए खै ट्रन दो दिखा कशिया ने। फिर भी बहुत बहुत शुक्रिया अर्जेंटीना लोग खतले मिन लोग ऑन दे उल्लेख लो कन होन ओम ए तीने आ कन डाल चीज दो ने तक्षो पोर्चुगल इन अनहोन लो पोन फ्रांस इन अनहोन तो वंग सब प्रेप इन चाको तो मंगे ओ तीने नंग ही ओके बहुत बहुत शुक्रिया मिन सब प्रेप लो वंग देखा नक्षर ले दो ने और सीजत लिखते हैं अचुल चुन थरुम पो थो पिया मई तो रते बोगा ने ते रे मई का इन रिंग रगा ने ओ तो अंतिम मसी भक्ति गीत आपके लिए मैं प्रस्तुत करने वाला हूँ। ये होगा सीओ सोराम कोर की ओर से गीत के बोल इसुने। और दोस्तों इसी के साथ फिर से मैं आपसे विदा लेने वाला हूँ, मिलती है 10:50 पर सुनते रहे आकाशवाणी आइजोल FM 107.7 क्योंकि ये रहता है हमेशा आपके साथ। तो मिलते हैं 10:50 पर।

हेलो नमस्कार और जी भाई दोस्तों, मैं आरजे टाइम साहब सभी श्रोताओं का स्वागत कर रहा हूँ और आप सुन रहे हैं 100.7 पे FM जोय। 10:50 हो चुके हैं तो इस खंड में मैं आपके लिए प्रस्तुत करने वाला हूँ मसीह भक्ति गीत। चिंता मत कीजिए, जो गीत हम आपके लिए प्रस्तुत करेंगे आपको पसंद आएंगे, इसी उम्मीदों के साथ चलिए इस खंड की शुरुआत करते हैं। जितने भी लोग गिरजाघर नहीं पहुंच पा रहे प्रभु की स्तुति करने के लिए, चिंता मत कीजिए, आपके लिए आपके घर आपके वातावरण को भक्तिमय और मंगलमय बनाने के लिए मसीह भक्ति गीत तो लेके आए हैं हम। तो संदेशों का भी इंतजार रहेगा हमें यहाँ पे आपके, और हमने अपने पहले भागों में कहा था कि मसीह भक्ति गीत सुनते सुनते हम अपने दिनचर्या के बारे में कन्नी तीन थिल ती तेपो कन शेर तो थे तीन वर्ल्ड कप फीवर अहुन लाइन पुका ओमले तो कनी इन ट्रांजो तेपो खा लो सही बोला अलिंग वे कनी ती खा इन फ्रिथर ले दोनिया। तो इस खंड का पहला मसीह भक्ति गीत जो भी आपके लिए मैं प्रस्तुत करने वाला हूँ ये होगा द विश्वासी की ओर से गीत के बोल प्यार का सागर।

तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, इस मसीह भक्ति गीतों के साथ। जी हाँ, डेविड सिंगर की ओर से था, माफ कीजिएगा, द विश्वासी की ओर से था ये गीत। तो इसी के साथ अगला मसीह भक्ति गीत सुनने से पहले मेरी दुआती क्या लिखते हैं, वो इंचु कलो मैं इलाव दिवती होन ही फो सी कलो लंग सिंग वी वंग मिन्नंग ट्रेने मत ये ने निंग लो राप लग लो लंग रंग दोन दिया लो लंग चेन रो वही गंति मिया लो और आगे लिखते हैं ये नंग ही एंग तिन ये का कवंग से तिन यो तक नहीं या चिंता मत कीजिए। आप को जैसे मैं बुलाता हूँ मेरी दुआती, तो आप हमें बुला सकते हैं मेरा टाइम्स, ठीक है। तो इसी के साथ अगला मसीह भक्ति गीत फिर से एक बार, जितने भी श्रोता अभी तक हमसे जुड़े हैं आप सभी के नाम में प्रस्तुत करने वाला हूँ। ये होने वाला है डेविड सिंगर्स की ओर से गीत के बोल, यीशु करेंगे।

ईसु करेंगे तेरी जय जयकार, तू ही हमारी ज्योति प्रभु। गा रहे थे डेविड सिंगर। तो इसी के साथ अक्लामसी भक्ति के सुनने का समय हो चुका है। फिर से एक बार जिनके गीत हम सुनने वाले हैं अभी, फिर से एक बार ये होने वाला है द विश्वासी। जी हाँ, ये गीत बहुत ही खूबसूरत है। जितने भी लोग द विश्वासी को पसंद करते हैं, उनकी गीत को पसंद करते हैं, तो ये गीत भी उनको पसंद आएंगे इसी उम्मीदों के साथ। चलिए सुनते हैं प्रभु परमेश्वर।

प्रभु परमेश्वर। जी हाँ, ये मसीह भक्ति गीत गा रहे थे द विश्वासी। तो इसी के साथ यहाँ पे फिर से एक बार संदेश की ओर हम नजर रखने वाले हैं। वो इंच मेरी दुआती का समझ था ये। और इसके साथ यहाँ पे खोवे पर नू एंड रम पुतनी किट नंबर वन पीसी जैसी का लिखते हैं। और जो टाइम्स लोम लो पाई लो ले ले तामो नेक्स्ट खाई तान हंती में इला लोम ओम सिया तीने का लोम राप था कतान मिंती लो लो आर जे आर के तान ती दे आगो पोई मिया लो का लोम लुटो के मिंतन लो का। और अगला गीत जो होगा यहाँ पे मैं जितने भी श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं आप सभी के नाम से वायदान करती पीसी जेसिकाई कंती तल्लो वांग ती वेले तत मैंने ओ ये होने वाला है कोलासिबेरिया मिशन कोर की ओर से। बहुत ही खूबसूरत गीत हम सुन चुके हैं इस मसीह भक्ति गीतों को हमारे दूसरे और हमारे लास्ट ड्यूटी के टाइम में भी ये गीत मैंने प्ले किया था। तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही रेस्पॉन्स मिला था अच्छा वाला। तो इसी के साथ चलिए सुनते हैं, आओ मिलके गाएं और पवित्र है कोलासिबेरिया मिशन कोर की ओर से।

कोलोसी एरिया मिशन कोर की ओर से हमने सुना था आओ मिलके गाएं और पवित्र रहें। तो इस मसीह भक्ति गीतों के बाद संदेशों का समय हो चुका है। मेरी दुआती लिखते हैं लास्ट ड्यूटी सो ये लो दौर ने ने छे ने छो का दौर चौ वे ओ श्रेम दिखा मारी छो क्लास आ ट्री नो इन वर्ल्ड कप एन छो मि मंती दा नतिया कांग ए लुतु का वर्ल्ड कप एन लो छो मि चंग कांग लो हो ती तिवे मिया नई वर वर बेते ने ओ ने मिशिंग हे का नि नंग लो गन ती का चति जेलिन कन सिया ते कन गई दान ते कन तुइ न जोंग ते पोनिंग छो अनि नंग थे लो रिम रिम आ ले लम कन तुइ न जोंग ते खा मी ते खा अन तुइ पुइ अल ती लुइ थे लो ने छ मो तिंग ते पो खम थे ने छ वांग इन हन सोइ सेल चिया मे मो रेल रु छ जोंग आ थिल्ला को यंग ची का तुम लोग फ्रॉम फैमिली का पथियन थू लो बका कन तुइ जोंग ते कन तुइ enge kan nom ti zong te nuom te minti la mi ten soisel emo soisel lo poli se kan tingar ngar tora ni achu dizel in mi en tu zong an tin ze sel bok khatru lo ni isi tara se tim te pon sina kan soito ka

झूमने वाली गीत। जी हाँ, झूम झूम गीत हम सुन रहे थे द विश्वासी की ओर से। तो इसी के साथ अगला मसीह भक्ति गीत जो होगा इस खंड के लिए हमारा अंतिम गीत होने वाला है, पर चिंता मत कीजिए। 12:50 पर दार सो पन्नीला मिनट समुआ गलो लेट लेगा, तब तक सुनते रहेगा आकाशवाणी आजोल एफ एम वॉइस 107, क्योंकि ये रहता है हमेशा आपके साथ। और जाने से पहले यहाँ पे हमारे दोस्त हितेंद्र दास आसाम से, इनका SMS भी आया है।

बहुत ही अच्छा लगता है जब आप हमें संदेश भेजते हैं। जो हितेंद्र जी, अगला मसीह भक्ति गीत आपके लिए और आपके पूरे परिवार के नाम में प्रस्तुत करना चाहूंगा। और मेरी द्वाती लिखते हैं, अर्जेंटीना ही कटन लो पोनी लो मासे मेसी फैंस हो ही अन ट्रोंग थे लुटुका तीनी यूट्यूब कमेंट अपुई थे गंग वही अधिक चिया तरो आचे ती जेलिन मेसी फैंस ते पोन रोनाल्डो फैंस ते वांग बोका नी रोनाल्डो अन ट्रोंग थे लो ना चंती ला कन सोई सुवाल लवांग चु मेसी रोनाल्डो रोनाल्डो मेसी असो इसे फक फक माइला अन नीट लुका फुटबॉल को वेला तुन दिन मुना चुन तीला अ बेरन नी वे वे दोना अ तू जोक पोचम से an mingero adai tong ai don lawani tro kan van ni le ni messi le ronaldo era kan chen mana to football ke jitne bhi khiladi hain aur football ko jitne bhi log pasand karte hain hum sab jante hain ki messi ronaldo ronaldo messi aajkal ke din mein yahi jhagda chalte rehta hai par hum ye bhi kehna chahte hain ki ye dono sabse bade khiladi hai is duniya mein filhal ye main keh sakta hu dunke ki chot pe aur अंतिम गीत सुनने का समय हो चुका है और मिलते हैं 12:50 पर। और ये गीत होने वाला है द विश्वासी की ओर से मेरे गुनाह की। और दोस्तों इसके बाद आने वाली है आपकी इंग्लिश आरजे आरजे नुंगनुंगी इंग्लिश मसी भक्ति गीतों के साथ कहेंगे इसको भी ध्यान से सुनेगा आकाशवाणी आज एफ एम 107.7 के साथ बने रहेगा।

हेलो नमस्कार और चिबे दोस्तों, मैं आरजे टाइम्स आप सभी श्रोताओं का तीसरी बार स्वागत कर रहा हूँ और आप सुन रहे हैं 107.7 पे FM जवाई। आज रविवार का दिन है तो आपके लिए हम

प्रस्तुत करने वाले हैं बहुत सारे मसीह भक्त गीत, ताकि आपके वातावरण और आपके हृदय को भक्ति में बना सके। तो अधिक समय ना लेते हुए दोस्तों, इस खंड का पहला मसीह भक्ति गीत प्रस्तुत करने का समय हो चुका है, जो कि होगा पीसी लियानमिंग थांग की खूबसूरत आवाज में। गीत के बोल भी होंगे खूबसूरत।

ये खूबसूरत गीत हमने सुना था पीसी लियानमिंग थांग के आवाज में, तो गीत के बोल भी खूबसूरत थे तो उनकी आवाज भी उतनी ही खूबसूरत थी। तो इसी के साथ यहाँ पे मेरी दुआती क्या लिखते हैं, लोलेत ले तामो खलमा रुआते सुरवेम एलम सुखुआ लक्षारी खोप मया लुम लु तुकलवा वत लु तुकलवा खुआ रोमांटिक कंतियांग देव टाइप का मानी मो मानी रोमांटिक लव या महिला खुआ ही जो रोमांटिक ही कन गई ना फिर एमएम थोड़ी। और जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं अभी दिन में आकाशवाणी आइजोल एफएम जोवी सौ दशमलव सात के साथ आपके लिए बहुत सारे मसीह भक्ति गीत लेके आए हैं अभी, तो दूसरा मसीह भक्ति गीत हम सुनने वाले हैं सोनी लंदन सॉन्ग की खूबसूरत आवाज में गीत के बोल यीशु तुम्हें बुला रहा।

अभी जो मसीह भक्त गीत सुन रहे थे ये था सोनी ललन स्वाइन की खूबसूरत आवाज में यीशु तुम्हें बुला रहा। तो इसी के साथ यहाँ पे हम एसएमएस की ओर नजर रखने वाले हैं। वालल सॉन्ग जोला आप पाती है दाबका ये क्या लिखते हैं यही हमी नंबर ही आकाशवाणी आइजोल नंबर नहीं है लेती है।

जी हाँ, बिल्कुल सही फरमाया आपने। सही देख लो तो आकाशवाणी आई जो एफ एम जो इजा पॉइंट पसरी लथन एस एम एस थोड़ा नंबर नहीं है। और आपका स्वागत करते हैं हम यहाँ पे। पहली बार आपका संदेश आया है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, वो भी हमारे खंड में कसिक में ना एस एम एस छियर तूर इथोन मस अकबर नगन ते दोन भी अच्छी छिया तला खप वक्त रहो। शुक्रिया। और इसी के साथ अगला गीत मैं आपके लिए प्रस्तुत करने वाला हूँ, जो कि होने वाला है यहाँ पे हमारे सिन्नत मिशन कोर की ओर से, मुक्ति दिलाए यीशु नाम रब की।

मुक्ति दिलाई येसु नाम सिनेट मिसर मिशन कोयर की ओर से हमने ये मसीह भक्ति गीत सुना था। तो अगला मसीह भक्ति गीत जो भी आपके लिए मैं प्रस्तुत करने वाला हूँ ये होगा पीसी लियानमिंग थंगा की खूबसूरत आवाज में गीत के बोल अब वो बुला रहा।

अब वो बुला रहा, हमने मसीह भक्ति गीत सुना था, इसीलिए हमें थंगा की खूबसूरत आवाज में। तो इसी के साथ यहाँ पे अगला गीत सुनने से पहले फिर से एक बार मैं संदेशों की ओर नजर रखने वाला हूँ। मेरी दुआती लिखते हैं नक्तुक सुना लव दीप्ति लैला नक्तुक चल अरे निले गिन का मन दो नक्तुक लव दीप्ति चुआन कबियल पा फिंग का श्रीलंग चे तिंगे या इलो दु छन सुमो कहन नल तिदेव कंगाय ल चाक तो लु तो का इलो दीप्ति तो रक दु छन सुमो तिनी ओम तक दिया। ओके कोई बात नहीं, चिंता मत कीजिए। इलो दु जोंग ते छु कन छेन ते पन ती छु सक नगे नगे तो रंगाय ओ और यहां पे खवेला मिथ लम लो पर नु एसएमएस पीसी जेसिका इलेक्टे आर जेटेम्स लम लो पा इलो ले ले ता मो कुअलुम सी आ चोरे और आगे लिखते हैं दस दस दस दस दस अगर दोगे वो बीस जैसे कहीं खो मेला मिल लो पर दूंगा तीन संचो माँ उन्हें लाओ थे लुटुक का आहाउ गंती वो बॉस बरला हैं अलंग छतु बक्सी लो मानी ते हैं रन पौर वे एमएम ट्रेनर फिर भी और आगे लिखते हैं खुआ लुम सी जिया ही तो कुम ते ही अनहिया लो मो तीने दिखा ना जिया दो एम अदाय सॉन्ग सॉन्ग तो रंग आयांग हितेंद्र दास आसाम से लिखते हैं गुड नून अर्जु जी आपको भी गुड नून मेरे दोस्त हितेंद्र जी कैसे हो बताइए खबर दीजिए हमें भी ठीक है। और यहाँ पे सॉन्ग जोला बनल सॉन्ग जोला आ पा इन तिबुका ओ इन तिक्लाइन मोत या वहीं नी तका ही चुवन लखन तूर ही अहुन बीक चे ही अम्लोवा वासे दिखा नि दुजों ते कन ने रेम चाने नि फचोन ति छवा सखचो गन तुम दोन ने ओ दिखा ने चियंग मे ओ सांगजोलॉजी और अगला मसी भक्ति गीत फिर से एक बार हम सुनने वाले हैं किन की आवाज में सोनी लंदन सांग की खूबसूरत आवाज में गीत के बोल तिमले सोचे को जीवन

तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही है, क्योंकि समय था आपका और मेरा 1:20 तक। तो 1:20 होने वाले हैं, मैं आपसे विदा लूंगा और मिलते हैं 2:35 पर फिर से एक बार मसीह भक्ति गीतों के साथ। तब तक सुनते रहे आकाशवाणी आइजोल FM 107.7, क्योंकि ये रहता है हमेशा आपके साथ।

हेलो नमस्कार रुचि भाई दोस्तों, मैं आरजे टाइम्स आप सभी श्रोताओं का चौथी बार और आज के हमारे भाग के अंतिम भागों में स्वागत कर रहा हूं। और आप सुन रहे हैं 107 पे FM जोय। 3 बजे तक का समय है आपका और मेरा। इस खंड में भी मैं आपके लिए प्रस्तुत करने वाला हूं बहुत सारे मसीह भक्ति गीत है। आशा करता हूं कि आप हमारा साथ अंत तक देंगे। इस उम्मीदों के साथ आइए चलिए शुरू करते हैं इस खंड को। जितने भी लोगों आज सुबह दिन में भी कहेंगे दोपहर में भी गिरजाघर गए हैं, वापस आ चुके होंगे। यदि आप रेडियो के पास बैठ के हमें सुन रहे हो तो ये पहला मसीह भक्ति गीत आप सभी के नाम होने वाला है। और खास करके गीत फिर से एक बार, जितने भी लोग किसी भी कारणवश गिरजाघर नहीं पहुंच पा रहे हो, कार्य की वजह से हो या फिर बीमारी की वजह से, न थो टूल वांगे मो दम लो न वांग ते पोनियेगा ओ पथियान बेतोरिन बिया कि न लोई लु थेलो ते तान कंठन सकदोन से उन्हें। और ये गीत होने वाला है बहुत ही खूबसूरत इलेक्ट्रिक वेग मसी संगति की ओर से। गीत के बोल हालेलुया जय जय।

हालेलुया, जय जय प्रभु। गा रहे थे इलेक्ट्रिक वैंग मसी संगति। तो इसी के साथ अगला मसी भक्ति गीत सुनने से पहले मैं पढ़ने वाला हूँ खोवेला मिथलोम लो पर नु जैसे का एस एम एस कंसियर लेगा आर जे टेम्स ला अम लो पा इलो लेट ले ता मो क्लो हंग तक नहीं हो दो नी ओ नेक्स्ट का इतानो बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे का इंक्लो तक हो तो रिमिंदो पका का क्लो हंग वे तो रंगा यंग तिन व इनका देवती चो आफु वियो इन कश्रिया ने मो कन खोम दान ते पोखा आ वत लुतुक बॉक्सी लाओ आसा हंति दोनीला निदंगाई न दाई ते बॉक्सी रुआसुर बॉक्सी लो सुर तुम लेक लेक लोम पका कन खोम दान ते पो हे आफु छोवेल वे कनी चो हे कदिउती वांग पोने मेथे ने तरो जिस का हेना पो मेम ओ और मेरी दुआती लिखते हैं इला सिगमेन नलो इन हेर छुक ता कंगाई ले डोंट ले मेचे बहुत बहुत शुक्रिया। फिर भी चिंता मत कीजिए कहीं तोंग ले बट तुरंगाई ला तरो और कंटी ताऊ वेंगे मेरी दुआ ती ती खाई दुखर छोइना के पो मेरा टेम्स ती वे दे उखर ला ट्रांगे से मैं साहिया। और इसी के साथ अगला मसी भक्ति गीत फिर से एक बार मैं प्रस्तुत करना चाहूंगा। नी तिन माई मी अनु मिन गाइस थ्री ती गन थ्री अ पमोया सरखान मी तान गंती पोकंगा अनि हि नुतलानी पसल ती दे उखर रंगो दिखान आई इन फ्रिचियंग ले जोल बिग तो रंगा या और गीत में आपके लिए प्रस्तुत करने वाला हूं आकाशवाणी एज वेल एफएम वॉइस और दसम ने साथ सुनने वाले श्रोता आप सभी के नाम ये गीत होने वाला है। फिर से एक बार सुनोत मिशन कोर की ओर से गीत के बोल तू वही प्यारी है। और ये गीत जो है, जी हाँ, मैं कहना चाहूंगा कि भूपेंद्र नाथ जी का रचा हुआ गीत है।

तू वही प्यार है सिनत मिशन कोर की ओर से हमने मसीह भक्ति गीत सुना था और मैंने पहले ही कहा था कि इस गीत के रचनाकार स्वर्गीय श्री भूपेंद्र नाथ जी थे। वो हमारे बीच नहीं रहे फिर भी उनकी ये खूबसूरत मसीह भक्ति गीत हमेशा हमारे साथ रहेंगे। और अगला मसीह भक्ति गीत फिर से एक बार प्रस्तुत करने का समय हो चुका है। यहाँ पे संदेश नहीं आए अभी के लिए, गुड बॉय का SMS तो सिर्फ आरजे नुंगे के लिए था। थिलखा अनरिस नम तीर मई मई खपत रो ओ मिनरिस तीर था सला जंकार इस दिक तक तोर निया तिदिक तोर हे रंजो दुआ लवा थियम लो लो ही जो ट्रे ना। और अगला मसीह भक्ति गीत मैं आपके लिए फिर से एक बार प्रस्तुत करने वाला हूँ। ये होने वाला है अनुग्रह गोस्पेल कोर की ओर से गीत के बोल गाओ नाचो जश्न मनाओ।

गाओ नाचो। जी हाँ, ये गीत हमने सुना था अनुग्रह गोस्पेल कोर की ओर से। तो इसी के साथ हम अगला गीत जो होगा हमारे लिए आज के लिए अंतिम गीत होने वाला है। जाने का समय हो चुका है दोस्तों, 3 बजने वाले हैं, पर क्या करें, विदा तो लेना ही होगा आपसे। इसी उम्मीद और वादों के साथ बहुत ही जल्द मिलेंगे। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, सेहतमंद रखिएगा, प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करना कभी मत भूलिएगा। और दुआती लिखते हैं यहाँ पे, कई तेचु मिफेल उचु अक्लु तुक तक में ही कनी यह अति ने आदि खपंगा कपम थपे तुय मोते ते जसिकाई ते मुन पुति नि ते अंगलो तकिन अनि हि छु मिफेल बी गदि ति गफ्रिया तिन ngori sai la wi re kho be tu la dam trai o ti kha ka ngai tu na lo lang thut me ya लो दम ट्रजेल वाला। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, आप सभी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए मैं प्रार्थना करूंगा परमेश्वर से। और अंतिम गीत जो भी आपके लिए मैं प्रस्तुत करने वाला हूँ, ये भी बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। तुम सा यशुआ मिनिस्ट्री की ओर से गीत हम सुनने वाले हैं। जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं अभी तक और हमारे लिए संदेश दिए हैं, आप सभी के नाम गीत छोड़ के जाने वाला हूँ। आरजे टाइम्स विदा लेता है आपसे, बहुत ही जल्द मिलेंगे। इस उम्मीदों के साथ सुनते रहे आकाशवाणी आइजोल FM 107.7, क्योंकि ये रहता है हमेशा आपके साथ।

0: सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटा ली हैं। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन किया गया है।
1: इस संशोधन के अंतर्गत उन विशेष आपातकालीन प्रावधानों को हटा दिया गया है जिनके अंतर्गत सरकार को देश में उत्पादित प्राकृतिक गैस और आयातित एलएनजी के आवंटन में प्राथमिकता देने की अनुमति थी। होर्मुज जलडमरू मध्य से एलएनजी की खेप में रुकावट आने के बाद इस साल मार्च में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत ये आपातकालीन आदेश जारी किया गया था। इस बीच मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर उन खबरों को भ्रामक और गलत बताया है जिनमें यह दावा किया गया है कि भूटान ने भारत से E20 पेट्रोल आयात करने का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रूपये की सहायता राशि जारी की। सरकार ने सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर शुल्क वाले विज्ञापनों में बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री के प्रसार को लेकर मेटा को कड़ी चेतावनी जारी की है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सरकार ने इंस्टाग्राम को ऐसी विषय वस्तु को बढ़ावा देने और इसकी पहुंच को सुगम बनाने वाले सभी विज्ञापनों और सामग्री को बंद करने का आदेश दिया है। असम के गुवाहाटी में कल से 2 दिवसीय ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक शुरू होगी।

0: मंत्रालय ने कहा कि इस बैठक में ब्रिक्स के सदस्य देशों के मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुख और वरिष्ठ अधिकारी विचार विमर्श करेंगे। इससे मादक पदार्थ नियंत्रण एजेंसियों के समूहों में संस्थागत निरंतरता को सशक्त बनाने तथा गहन परिचालन सहयोग को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। भारत की अध्यक्षता में कल से केरल के कोच्चि में दो दिवसीय ब्रिक्स महिला कार्य समूह की बैठक शुरू होगी। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि ब्रिक्स देशों के अधिकारी महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के क्षेत्रों सहित अन्य क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण से संबंधित मुख्य मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह कल से जिनेवा में एआई गवर्नेंस पर संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक संवाद में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह वैश्विक संवाद एआई के अंतर्राष्ट्रीय संचालन को आगे बढ़ाने का अनूठा अवसर है, जो अंतर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और बहुहितधारक प्रयासों का पूरक है। दो दिवसीय वैश्विक एआई संवाद में एआई पर स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी, जो एआई की क्षमताओं, उभरते अवसरों और जोखिमों का पहला स्वतंत्र वैज्ञानिक मूल्यांकन प्रदान करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रोबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम लॉर्ड्स में इंग्लैंड का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। दोनों टीमें अपराजित रहते हुए फाइनल में पहुंची हैं। ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को हराया और इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। मौसम विभाग ने आज गुजरात, कच्छ, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन पर दुख व्यक्त किया है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नरेश मागो। Government has withdrawn the emergency curbs on natural gas supplies after liquefied natural gas LNG shipments through the Strait of Hormuz resumed following a ceasefire in the West Asia conflict. In a notification, Ministry of Petroleum and Natural Gas said the Natural Gas Supply Regulation Order 2026 has been amended, removing key emergency provisions that had allowed the government to prioritize the allocation of domestically produced natural gas and imported LNG. Union Minister of Rural Development Shivraj Singh Chauhan has expressed happiness that Vikasit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Grameen VBG Ramji Act 2025 has successfully come into force on the 1st of this month. The minister today released the first installment mother sanction of over 25,000 crore rupees to the states under the mission through video conferencing. Mr. Chauhan also reviewed the implementation of VBG Ramji with rural development ministers of all states and union territories. He said that the first installment released today is aimed at ensuring that states have adequate funds so that wages can be paid within 15 days.
2: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे।
3: It took 3 years for MG Narega to be implemented across the country, but I am proud of all of you. Unlike MG Narega, the Viksit Bharat G Ramji Yojana was rolled out nationwide on its very first day. The scheme guarantees 125 days of employment instead of 100 days. If more than 7.5 lakh crore rupees is utilized effectively over 5 years across 2.86 lakh gram panchayats, every village can be transformed into a prosperous and fully
2: समृद्ध और विकसित गांव का निर्माण हो जाएगा।
1: The government has issued a stern notice to Meta on child sexual exploitative and abuse material in paid ads on social networking site Instagram. Official sources said government has ordered Instagram to disable all ads and content promoting and facilitating access to abusive material. Ministry of Electronics and IT has demanded a detailed explanation from Meta within 7 days. The government is reviewing whether the platform has complied with India's intermediary safety guidelines. Distribution of pornography and child sexual abuse material is a criminal offence in India under the digital laws. Prime Minister Narendra Modi's visit to Indonesia beginning tomorrow will give impetus to the existing relationship between the two countries and will also open up new areas of cooperation. In an interview to Akashvani in Jakarta today, Mr. Sandeep Chakrabarty, Indian ambassador to Indonesia, said that during Prime Minister Narendra Modi's visit to Indonesia from 6 to 8 July, there will be several new areas of cooperation that will open up between India and Indonesia, and intensification in the relationships and greater economic engagement between these two large countries will be visible. The Indian Council of Medical Research, ICMR's flagship initiative, ICMR Minds, a national health research priority project, has won gold at National Awards for E-Governance 2026. The award was presented by Union Minister of State for Personnel, Public Grievances and Pensions, Dr. Jitendra Singh. While addressing the recognition, Director General of ICMR, Dr. Rajiv Behel, said that ICMR will continue to pioneer data-driven, scalable technology interventions to solve complex public health challenges. Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami today flagged off the first batch of the Kailash Mansarovar Yatra 2026 from Tanakpur in Champawat district for the next leg of the pilgrimage. The first batch comprises 49 pilgrims, including a doctor, with 34 men and 15 women. Union Youth Affairs and Sports Minister Dr. Mansukh Mandaviya today participated in the 80th edition of Fit India Sundays on Cycle initiative in New Delhi this morning. The mission of the movement is to bring about behavioral changes and move towards a more physically active lifestyle. In the ICC Women's T20 World Cup, England will take on Australia in the final at Lord's Cricket Ground in London today. Australia secured their place in the final with a victory over the West Indies in the semi-finals, while England defeated South Africa on Thursday to register their sixth consecutive win and book a place in the championship decider. And in the FIFA World Cup, France booked their place in the quarterfinals with a hard-fought 1-0 victory over Paraguay in the round of 16 at Philadelphia. And that is the end of this news bulletin.

0: पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज सुनते हैं मध्य प्रदेश में जल संरक्षण और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले श्री मोहन नागर के साथ खास बातचीत। इस कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं दीपा सिंह।
2: श्री मोहन नागर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
3: जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आप दशकों से काम कर रहे हैं पर्यावरण और जल संरक्षण के क्षेत्र में। जिस वक्त आपको पद्मश्री से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई, उस वक्त आपके मन में क्या भाव थे?
3: बहुत आनंद की अनुभूति हुई कि बहुत छोटे छोटे काम करके भी इतना बड़ा पुरस्कार प्राप्त हो सकता है। देश के हमारे प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी, भारत सरकार का ध्यान छोटे छोटे कामों की तरफ भी है, लेकिन जो परिणामकारी काम समाज के लिए, प्रकृति के लिए, पर्यावरण के लिए जो हम जन भागीदारी के माध्यम से कर रहे हैं, बैतूल जिले में पिछले 3 दशक से समाज ने उस काम को स्वीकार किया है, उसके परिणाम आए हैं।
2: आपको समाज सेवा की सीख कहाँ से मिली?
3: मैं एक ग्रामीण क्षेत्र का निवासी हूँ। मेरे जन्म जो है वो राजगढ़ जिले के छोटे से गांव में हुआ है, और इसलिए ग्रामीण परिवेश में रहने के कारण और साथ में ही जो पारिवारिक हमारा बैकग्राउंड है वो किसान परिवार का होने के कारण हमारे दादाजी, हमारे पिताजी, हमारे सभी परिवार के लोग ये उसी कार्य में लगे हुए हैं, खेती में, जल सुरक्षा में, पौधे लगाने में। मैं देखता था मेरे दादाजी जब गाय चराने के लिए जाते थे तो कोई भी ऐसा छोटा पौधा दिखता था तो उसमें कांटे लगा देते थे। कुएं में जाते थे, तालाब में जाते थे तो पहले उसमें से कोई कचरा निकाल करके बाहर करते थे और उसके बाद फिर उसके पानी का उपयोग करते थे। तो बचपन से ही अपने पूर्वजों की सीख जो मिली थी, बाद में फिर समाज कार्य के लिए गए तो समाज ने फिर सारी बातें अपने आप ही सीखने को मिली। तो स्वाभाविक रूप से फिर जो बचपन से सारी बातें थी वो आगे चल करके काम आई और पर्यावरण की

0: सुरक्षा, जल की सुरक्षा और समाज सेवा के लिए, शिक्षा को लेकर के, ग्राम विकास को लेकर के, फिर बैतूल जिले को अपना कार्यक्षेत्र बनाया और उसी में फिर अभी तक लगे हुए हैं।
1: बहुत ही अच्छी बात कही कि आपने ये सीख जो है अपने घर से ही ली है। जल संरक्षण एक व्यक्तिगत जिम्मेदारी, लेकिन आपने सामाजिक जिम्मेदारी से कैसे बनाया?
0: बिल्कुल, मैं जब बैतूल जिले में 91-92 में गया तो वहां का जो जिले में जब भ्रमण किया तो ये ध्यान में आया कि बैतूल जिले में वर्षा तो पर्याप्त मात्रा में होती है, 60 इंच के लगभग वहां बारिश होती है, लेकिन उसके बाद भी और वहां का जो समाज है, विशेषकर जो जनजाति आदिवासी समाज है, वो दीपावली के बाद खरीफ की फसल के बाद में ज्वार मक्का लेकर के उसके बाद फिर पलायन कर जाता था, क्योंकि उसके बाद कोई काम था नहीं। तो सबसे बड़ी समस्या थी, जब लोगों से बात की हमने फिर पूरे जिले में और 2-3 वर्ष लगातार अलग अलग महा में पदयात्रा की गांव की वहां पर, और उसके बाद लोगों से चर्चा में ध्यान में आया कि पानी गिरता तो पर्याप्त लेकिन रुकता नहीं है, और इसलिए पानी को रोकने के छोटे छोटे प्रबंध किया जाए। वहां के जो बरसात के बाद जो नदी नाले बहते थे उसमें बोरी बंधान के माध्यम से छोटे छोटे स्टाफ डैम बना करके, और वो हमने लोगों के सहयोग से काम किया। जब हम एकल विद्यालय भी वहां पर 400-500 गांव में चलाते थे बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए, उन बच्चों को लेकर के, अभिभावकों को लेकर जब हमने काम किया, और जब ध्यान में आया कि एक छोटे से बोरी बंधान बनाने से 15-20 एकड़ की फसल सिंचित हो सकती है, खेती और की जा सकती है, तो लोग फिर उस अभियान में जुटे और हमने पूरा एक अभियान महोत्सव के रूप में पूरे जिले में प्रारंभ किया। आज बैतूल जिले के 500-600 से ज्यादा गांव में लोग स्वतः होकर के उस काम को करते हैं, क्योंकि हमने 2 दशक तक लगातार उस काम को किया है, और उसके कारण फिर जो लोग पलायन कर जाते थे उनके 1-1, 2-2 एकड़ की जब खेती होने लगी तो फिर पलायन भी कम हुआ और उसके साथ में लोगों को उसके माध्यम से रोजगार भी मिला।
1: मोहन सर, आपने एकल विद्यालय की बात कही है, कैसे आपने बच्चों को एडुकेट किया है, जो वहाँ के पेरेंट्स थे वो अभिभावक कैसे आपके साथ जुड़े?
0: जब मैं बैतूल जिले में गया उस समय अनेक गांवों में स्कूल नहीं थे, बाद में तो फिर सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत सब जगह हो गए विद्यालय, लेकिन उस समय नहीं थे। तो हम गांव में जाते थे तो बच्चे अशिक्षित थे, निरक्षर थे, पूछते थे कि सबसे बड़ी आपकी गांव की समस्या क्या, एक बार हमको बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई व्यवस्था कीजिए। तो हमने फिर विद्या भारती की जनजाति शिक्षा के माध्यम से, भारत भारती संस्था जो हमारी है उसके माध्यम से, उसी गांव के कम पढ़े लिखे या जितना भी पढ़ा लिखा था उसका चयन किया, उसको हम ट्रेनिंग देते थे 10 दिन की ट्रेनिंग में, उसको अक्षर ज्ञान, भाषा ज्ञान, अंक ज्ञान, कैसे अपने बच्चों को पढ़ाना है, उस ट्रेनिंग के माध्यम से फिर गांव में सिंगल टीचर स्कूल, उसको एकल विद्यालय इसलिए कहते हैं कि एक शिक्षक रहता है और वो गांव के बच्चों को पढ़ाता है। तो उसके माध्यम से फिर गांव में ये विद्यालय प्रारंभ किया, और छोटे छोटे बच्चे जो बकरी चराने जाते थे या काम करने जाते थे उनको सुबह 7 बजे से 10 बजे तक भाषा ज्ञान, अंक ज्ञान, अक्षर ज्ञान करना, उनको संस्कार की कुछ बातें बताना, उनको उसका स्वास्थ्य अच्छा रहे इसलिए योगासन व्यायाम कुछ बताना, देशभक्ति के गीत है, परंपरागत जो हमारे गोंडी संस्कृति, कोरकू संस्कृति के जो गीत है उसी भाषा में उनको बताना, और धीरे धीरे फिर उन बच्चों का शिक्षा के रूप में विकास हुआ, फिर स्कूल में उनका एडमिशन हुआ। हमें से कई बच्चे जो है उच्च शिक्षा की ओर गए हैं, हमने उसके लिए फिर 2-3 छात्रावास भी प्रारंभ किया, क्योंकि दूर के बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे, तो फिर हमने 3 जनजाति बच्चों के अलग अलग छात्रावास भी प्रारंभ किए, उससे भी बच्चे रहकर के पढ़ाई कर रहे हैं, आज उच्च शिक्षा को लेकर के स्वावलंबी भी हुए हैं और सरकारी जॉब में भी गए हैं, कुछ अपना स्वयं का भी काम कर रहे हैं।
1: सर, आदिवासी और जनजाति समाज को सशक्त बनाने में भी आप काफी सहयोग कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि वो क्या मुख्य धारा से जुड़ गए या हमें और प्रयास करने की जरूरत?
0: हमारा जो जनजाति आदिवासी समाज है प्रकृति से जुड़ा हुआ समाज है, और इसलिए उनको कोई चीज बताना कि प्रकृति की रक्षा कैसे करना, ये सूरज को दीपक दिखाने जैसा है। तो हमने तो उनसे ही जाकर के सीखा कि कैसे प्रकृति का संरक्षण किया, क्योंकि वो तो हजारों वर्षों से प्रकृति के बीच में रह रहे हैं, और जो जंगल सुरक्षित है वो उन्हीं के कारण सुरक्षित है। हमने शहर में रह करके तो जंगल खत्म कर दिए, गांव में जंगल खत्म कर दिया, प्रकृति प्रेमी होने के कारण, प्रकृति पूजक होने के कारण, और इसलिए उन्होंने नदियों को और सारी जो सुरक्षा करके रखी हमारे जीव जंतुओं को। तो लेकिन उनमें शिक्षा का अभाव था, आधुनिकता जो थी वो उसका अभाव था, उसको लेकर के हम उनके बीच में गए, जैविक खेती को लेकर के, ग्राम स्वावलंबन को लेकर के, कुछ गांव में हमने होम स्टे प्रारंभ किए जिसके माध्यम से लोग वहां आकर के रुकने लगे, उनकी आर्थिक व्यवस्था में सुधार हुआ। हमने एक अन्नपूर्णम मंडपम योजना बनाई कि घर का जो पानी हम उपयोग करते हैं वो जो बहके जाता है उसमें ही हम सब्जी भाजी लगाए, हमने कुछ बीज उनको दिए, और ऐसे घर घर में पीछे जो है वो इस प्रकार की सब्जियां लगा करके एक स्वावलंबन की दिशा में वो आगे बढ़े। जैविक खेती के माध्यम से कैसे, क्योंकि गोपालन और पशुपालन बड़ी मात्रा में वहां होता है, तो जैविक खेती कैसे कर सकते हैं ताकि बाजार से जो हम रासायनिक खाद और कीटनाशक जो महंगा खरीदते हैं उससे हमको छुटकारा मिले, इस दिशा में प्रयास किया। तो ऐसे छोटे छोटे प्रयास किए जिससे उनको एक आर्थिक स्वावलंबन की दृष्टि से और एक सशक्त उनको एक काम मिला गांव में, और जो पलायन था, फिर सरकार के बीच बीच में अनेक प्रकार की योजनाएं आई जिससे बिजली को लेकर के, पानी, सड़क सब गांव गांव तक पहुंची, उसमें हमारा भी काम छोटा छोटा एक गिलहरी की तरह हमने भी उसमें किया, जिससे समाज को और एक स्वावलंबी समाज बनने में उनके माध्यम से उनको एक लाभ मिला।
1: जल गंगा अवतरण आपका अभियान है जिसे जन आंदोलन बनाया है, आप इस अभियान की सोच और प्रभाव के बारे में बताइए हमारे श्रोताओं।
0: बिल्कुल, जब हम उन लोगों के बीच में गए

0: तो उनने कहा कि भाई आपकी गांव की समस्या क्या है, तो हमारे गांव की समस्या पानी है। तो ये समस्या कब से है, तो ये 20-25-30 साल से हुई है। इसके पहले क्या था, बोले पहाड़ों पर जंगल था घना, जब जंगल समाप्त हुआ धीरे धीरे तो फिर वो पहाड़ जो है वृक्षविहीन हो गए, तो जो नदी नाले बहते थे वो भी धीरे धीरे बंद हो गए। और इसलिए पहाड़ों पर पानी नहीं रुकता है, इसलिए पहाड़ों पर पानी रोकना है उसके लिए कोई ना कोई उपाय करना पड़ेगा। तो फिर हमारे ध्यान में आया कि गंगा जी का अवतरण हुआ था, कैसे हुआ था, तो भगीरथ गंगा लेकर के आए। इसी कंसेप्ट को लेकर के फिर हमने गंगा अवतरण अभियान बैतूल जिले में प्रारंभ किया। सबसे पहले वहाँ की जो सोना घाटी है उस पहाड़ी को हमने एक मॉडल के रूप में बनाया। वर्षा का जल कैसे रुके उसके लिए हमने फिर खंतियां खोदना प्रारंभ की, जहाँ जैसी भौगोलिक संरचना थी, कहीं 6x2x2 की, कहीं 10x2x2 की। और उसके लिए हमने समाज को आह्वान किया कि हम सब, क्योंकि ये हमारी धरोहर है, और अगर ये पहाड़ी पर पेड़ नहीं है तो हमारे यहाँ जल भी नहीं बचेगा, क्योंकि पहाड़ियां हमारे यहाँ पर जितने ही है ये सब हमारे ओवर हेड टैंक है, पानी की टंकियां हैं। जैसे पानी की टंकियां शहरों में होती है, उसमें पानी भर देते हैं फिर बाद में सप्लाई करते हैं, तो ये पहाड़ हमारे पानी की टंकियां हैं। इस वर्षा का जल भर जाता है, बाद में फिर हमको मिलता है, तो इसलिए इसको जल से भरना है। तो धीरे धीरे हमने खंतियां खोद करके उसमें वर्षा का जल रोका, वहां पर पौधारोपण किया, और उसके माध्यम से धीरे धीरे अपने आप 3-4 वर्षों में जहां 1000 फुट पर भी पानी नहीं था, वहां 100 फुट के नीचे 60 फुट पर भी पानी उस जगह पर आ गया। तो एक परिणाम था उसका, ये गंगा अवतरण था कि उसके गंगा जी को रोको, और उसके बाद धीरे धीरे फिर नदी नाले के माध्यम से कुएं बावड़ी से उसका पानी हम सबको मिलेगा। और फिर ये काम पूरा हमने 75 पहाड़ियों पर बैतूल जिले में ये काम किया। मोदी जी का जो आह्वान था कैच द रेन, ये महामंत्र है मोदी जी का, जो उन्होंने कहा कि वर्षा के पानी को जहां गिर रहा है वहां पकड़ लो, 10 मीटर से ज्यादा अगर वर्षा का जल बह गया तो फिर वो अपना रास्ता बना लेता है। और इसलिए 10 मीटर के पहले ही कोई संरचना बना दो, कोई पेड़ लगा दो, कोई खंती खोद दो, कोई घास लगा दो, कोई पत्थर से उसको रोक दो, तो फिर वर्षा का जल धीरे धीरे जमीन में जाने लगता है, उसकी गति कम होती है, तो तेज हो जाएगी तो फिर वो आगे बढ़ता जाएगा। और इसलिए उन्होंने कहा कि वर्षा की पहली बूंद जहां गिरे वहां उसका प्रबंधन करना, यही जल प्रबंधन का अनाराम है। और हमने वहां के स्थानीय जनजाति समाज, आदिवासी समाज के साथ मिलकर के यही काम बैतूल जिले की पहाड़ियों पर किया, यही गंगा अवतरण अभियान है।
1: आपसे चाहेंगे कि कुछ छोटे छोटे ऐसे टिप्स आप हमारे श्रोताओं को दें, गर्मी आएंगी फिर बारिश आएगी तो वो भी जल का संचयन कर सके।
0: बिल्कुल बिल्कुल, उसके लिए 3 उपाय हमको करना पड़ेंगे। एक तो वर्षा के जल का संरक्षण करना पड़ेगा कि वर्षा का जल कैसे अधिक से अधिक जमीन के अंदर जाए। फिर जो संरक्षित जल है उसका समुचित उपयोग करना पड़ेगा, और जो उपयोग किए हुए जल का पुनर्उपयोग करना पड़ेगा, कितना हम रीयूज कर सकते हैं पानी का। ये 3 बातें समाज को आज सिखाने की आवश्यकता है। केवल एक काम करेंगे तो जल संरक्षण नहीं होगा, जल प्रबंधन नहीं होगा। ये 3 बातें, सबसे पहले हमारे यहाँ क्या है कि बारिश मुश्किल से 100 दिन होती है, और उसमें भी 10 दिन में ही 90-80% बारिश हो जाती है। बारिश का जो पीरियड है तेज बारिश का बहुत कम है, 8-10 दिन 12 दिन ही हमारे यहाँ पर है, और इसलिए उतने में ही हमको जल प्रबंधन करना है। इसलिए हमको उपाय करना पड़ेगा कि पानी जहाँ गिरता है हमारे घर का पानी घर में रुके, उसके लिए हमारी घर की छत 1000 फुट की भी है तो उसमें 1.25 लाख लीटर पानी उसमें गिरता है, तो कैसे हम उसको कोई सोक पिट बना करके, रेन वाटर हार्वेस्टिंग बना करके हमारे घर में ही, कहीं पर आज हम घर बनाते हैं तो इतनी सारी चीजें बनाते हैं, तो अपने आंगन में या घर के पीछे कहीं भी एक ऐसा स्थान बनाए जिसमें हमारी छत का पानी हम जमीन के अंदर उतार दें, तो पानी की समस्या अपने आप हल हो जाएगी। फिर जिस पानी का उपयोग कर रहे हैं उसका उचित रूप से उपयोग करें, कि पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है तो जितना चाहे उतना मन चाहे उपयोग करें, ऐसा नहीं। अनुशासन पूर्वक आज जल का उपयोग करने की आवश्यकता है। फिर आपने जिस पानी का उपयोग किया उसको सिंचाई के रूप में, गमलों के रूप में, अन्य अन्य रूप से उसको कैसे उपयोग कर सकते हैं, उसका पुनर्भरण कैसे कर सकते हैं। कुल मिलाकर के हमको आज आवश्यकता इस बात की है कि युवा समाज जो है इस दिशा में आगे आए, और छोटे छोटे काम अपने गांव के, कोई पास की पहाड़ी होगी, कोई पास का क्षेत्र होगा, किसान अपने खेत में मेड़ बंधन करें, गांव का पानी गांव में रुके, इसलिए तालाबों का हमारी जो जल शक्ति मंत्रालय है मोदी जी ने एक बड़ा काम किया है उसको बना करके गांव गांव में तालाब बन रहे हैं, अमृत सरोवर बन रहे हैं, उसके माध्यम से अपना रोके। फिर पहाड़ का पानी पहाड़ में रोके, खेत का पानी खेत में रोके, नदी का पानी नाले का पानी उसमें रोके। तो ये छोटे छोटे उपाय अगर हम समाज के साथ मिलकर के करते हैं और व्यक्तिगत स्तर पर करते हैं तो उसका बहुत लाभ मिलता है। एक आपने 6x2x2 की खंती भी अगर खोद दी है कहीं पर और उसमें वर्षा का जल जा रहा है तो 30,000 से 35,000 लीटर पानी केवल उसके माध्यम से जमीन के अंदर चला जाएगा। हम छोटा सा काम करेंगे तो उसका एक परिणाम जो है बड़ा होगा। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण जैसे मैंने आपको कहा कि सोना घाटी की पहाड़ी है, वो पहाड़ी वो है, कभी आपने भवानी प्रसाद मिश्री जी का नाम सुना होगा, उन्होंने कविता लिखी थी सतपुड़ा के घने जंगल ऊंगते अनबने जंगल,
1: वो उसी
0: पहाड़ी पर उन्होंने 1939 में बैठ करके लिखी थी। और जब 2014 में उनका जन्म शताब्दी वर्ष आया तो हमने उनका जन्म शताब्दी मनाया, तो जब उनके बारे में पढ़ा और उस पहाड़ी को देखा तो उस पहाड़ी पर एक भी पेड़ नहीं था, वो वृक्षविहीन पहाड़ी हो गई थी, झाड़ियां कुछ बची थी। तो हमने उसी पहाड़ी को पहले कहा कि भवानी प्रसाद मिश्र जी को अगर सही श्रद्धांजलि देना है जन्म शताब्दी वर्ष में तो इस पहाड़ी को फिर से हरा भरा करेंगे। और इसलिए बैतूल के लोगों को, आसपास के गांवों को आह्वान किया कि ये सोना घाटी की पहाड़ी हमारी धरोहर है, इसको हम बचाएंगे। और उसी पहाड़ी पर गंगा अवतरण अभियान प्रारंभ किया और वहां पर 8,000 से ज्यादा हमने जल संरचनाएं बनाई और उसके बाद फिर 32,000 से ज्यादा उसमें पौधे लगाए, जो परंपरागत पौधे थे उनका संरक्षण किया। लाखों की संख्या में उस पहाड़ी पर पौधे

0: जन अभियान परिषद में भी उपाध्यक्ष हैं, भारत भारती शिक्षा संस्थान से भी जुड़े हैं, शासन, शिक्षा और समाज सेवा, इन तीनों भूमिकाओं को आप कैसे देखते हैं?
1: जी बिल्कुल, ये एक ही काम है, ये एक प्रकार से सेवा की त्रिवेणी है। जब मैं बैतूल जिले में यह काम कर रहा था, मध्य प्रदेश सरकार को ध्यान में आया होगा कि यह काम पूरे प्रदेश में होना चाहिए, और इसलिए उन्होंने मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद का उपाध्यक्ष बना करके पूरे प्रदेश में काम करने का अवसर दिया है। और पिछली बार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का जो अभियान है जल गंगा संवर्धन अभियान, उसको लेकर के हमने पूरे प्रदेश में हजारों गांवों में जाकर के इस अभियान को लिया, और उनके नेतृत्व में हमने 40 लाख लोगों को जनभागीदारी से इस नेटवर्क से लोगों को जोड़ा। हमने पुरानी 2200 बावड़ियों को स्वच्छ किया, 7000 कुओं को साफ किया, नदियों के तट स्वच्छ किए, और पुरानी जल संरचनाओं को हमने साफ करके समाज के माध्यम से नई जल संरचनाओं का निर्माण किया। अभी पूरे प्रदेश में हमने उसी के माध्यम से 7000 से ज्यादा बोरी बंधान बना करके वर्षा के जल को रोकने का काम किया है, शिक्षा के माध्यम से और पर्यावरण के माध्यम से और समाज सेवा ग्राम विकास को लेकर के। और ये जो तीनों बातें हुई है, मुख्यमंत्री जी ने इस प्रकार का काम करने का अवसर दिया है। पहले एक जिला हमारे कार्यक्षेत्र में था, पूरे 55 जिलों का काम उन्होंने दिया।
0: बिल्कुल मोहन जी, आपके अनुभव और विचार निश्चित रूप से हमारे श्रोताओं को जल संरक्षण और उनके प्रति सोचने के लिए, कुछ करने के लिए प्रेरित करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।
1: जी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज आपने सुनी मध्य प्रदेश में जल संरक्षण और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले श्री मोहन नागर के साथ खास बातचीत। इस कार्यक्रम का संचालन कर रही थी दीपा सिंह।
3: पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी।

नमस्ते, आकाशवाणी एफएम जो 100.7 में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ है आरजे एजवाल बोई। आज रविवार का दिन है। पूरे दिन उम्मीद है आप गिरजा घर गए होंगे। पूरे दिन आपने ईश्वर की स्तुति गीत सुना होगा, उनके प्रचार सुने होंगे। और इसी तरह एफएम जो 100.7 में भी हम इसे बरकरार रखेंगे। इस पूरे खंड में हम ईश्वर की स्तुति गीत जो है वो सुनने जा रहे हैं। और आशा करती हूँ अपने तन मन और धन के साथ आप हमारे साथ लगे रहेंगे। अपने प्यार भरे हमें एसएमएस हमें भेजते रहिएगा। और है वो इन पथिया नी नी आरजे ज्वाल बोई करोने लेता आ एसएमएस क्यू तक तक ठूम तक तक दिखा रंथन ले चुर चुरुला एंगे पोलना तुनकार छुंग पोलना हंदोन थरते रिल रो वेजोंग ते पोखा कंदो ने थे दिन एफएम जो ओय लमा ते पो हेमि चनचिन मोके ए हेतलमपंग कै नै दो ते पो कन रिल रो सोई तुर तम तक ते पोखा कंदो खो खोम वे थे नि चु चु पोक छान हुन अनि आ आर जे जवाल बोय ने हुन कन मंग मे कनि खा और नि थसुंग मिया लो तुर खान कन हेन सोम दुनी। तो दोस्तों, इस खंड में हम सुनने जा रहे हैं विजय गीत मंडले। ये जेमबो की ओर से एनरल ट्रंपुएन पार्टी की ओर से ईश्वर की स्तुति गीत हम सुनेंगे। खंड की शुरुआत करते हैं प्रभु ईश्वर के गीत के साथ। विजय गीत मंडले जेमबो की ओर से हम सुनेंगे प्रभु मेरे।

तो दोस्तों, आपने जो सुना वो था हमारे विजय गीत मंडली जेम्बो की ओर से प्रभु मेरे। चलिए आप कैसे इसकी उबरते हैं। मैं मोहिते या मैसेज रंथिंगा जोलबोई नमस्ते ड्यूटी नाम ले रंती आ कम ड्यूटी नाम हाल ओ मैं मोहिते मिन लो गाय थजे ला ओ लेवी कुंग ते हियानी आरजे जोलबोई जानी सुनो आम दे विन हुन मंग हो ले हु ओ ड्यूटी नाम ती आ ए विकुंग ते रन लन हिसानी कन ड्यूटी हि नाम लो थे लो नि टॉप मे नि मो ओ त्यांग जेलिन कन छान दंग ते पोखारन रिसोले छवा छवा तो मेरो आ हे चो ए अलहुन लवाल मा खोप मेया चोवांग इन चो ते पोकन ना ए लो तो रकन गाया थेन ते सु कन लो इन बात से थन ते पोनि मा ना। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपने अगले स्तुति गीत के साथ। हम सुनेंगे ललचंद पोएम पार्टी की ओर से मिलकर चले।

तो दोस्तों, आपने जो सुना वो था हमारे विजय गीत मंडली जिम्बो की ओर से, आओ मिलकर। हम कितने खुश नसीब है ना दोस्तों, कि हमारे कितने गुनाह होते हुए भी, हमने कितने पाप किए करते हुए भी, आज तक ईश्वर मसीह का प्यार जो है हम पर हमेशा बरकरार है। एंड इसका हमें फायदा उठाना नहीं चाहिए, गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए। आज इस वक्त, इस पल, आपके पास ये जो पल है, ये जो समय है, ये बहुत ही कीमती है। इसलिए इसे ईश्वर के लिए अपने तन मन धन के साथ ईश्वर की स्तुति कीजिए। एंड उनके दिखाए हुए रास्ते पर हमें चलने की कोशिश करनी चाहिए, है ना। ऑल राइट, और वी कुंते ही अन इंसानी ही लाइफ जान नियम खा और अंत्य कवन अनि एमले कवन स्यांग लो एम। ओ वी कुंते या जानिन ही के मातक सुकन निलवा हमारे जो मिजो और मिजो खान लाइफ तो नहीं। ओ दारिन जा तांगे तेरो खचुन किना आ कन मिजो आरजे ड्यूटी तुर सो आरजे सोमन अरन पोंग आ अरन पोंग मई तुर आंगाई ला। ओ लाइफ लाइफ लमाते पो खानिन कनिन मुले छुआई छुआई का कनानिन बेसे दोनी। ओ चलिए, हम अपने इस खंड को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट हम सुनेंगे टनपुई एन पार्टी की ओर से सरों का गुलाब।

तो चलिए इस खंड का सबसे आखिरी स्तुति गीत सुनने का फिर से वक्त आ गया है। विकुंते मैसेज कंस्या रंगा आरजे चामी ने खान लाइफ आलो लंगवे उलात्या इन मुचा कोमले मित्र विकुंते अमर सो लाइफ ने तो पातो आरजे सो म पार्टे हियानिन कनलन वे हि मिन फलंग ए मो कनशि लोमो चुवान सानिन लाइफ उन दोना खानिन सो म आरजे सो म ने ना खानिन लोइन सोइ लु वे दान ते पो कन लोंगै तोवा वेंगा असिर वे ला लोलन वे शिम शिम ते पो ते रो चा कोम वे लोम एंग पो नि से आरजे सो म थु थु नि से ते रो अले इस खंड की सबसे आखिरी गीत हम सुनते हैं ना। यस, आपके प्यार भरे एसएमएस के लिए बहुत शुक्रिया। और मैं फिर से वापस लौटूंगी दोस्तों ठीक 6:40 में दारुगले में सोमनिया कुरन केरले दो नने ओ सोते ले लो ए उला इंति तुरते लो ती संग संग उला दारुगले में सोमनिया कनि मुठो दोनिया। इस खंड की सबसे आखिरी गीत हम सुनेंगे ये होगा लल्टन पेन पार्टी की ओर से, ये है ठंडी। और जिन्होंने मुझे एसएमएस भेजा है आप सभी के लिए, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM 100.7, आपके साथ है आरजे इस वाल बोई।

नमस्ते, आकाशवाणी एफएम 100.7 में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ है आरजे बोलिए। आज रविवार का दिन है और पूरे दिन आपने क्या किया, आपने कैसे वक्त बिताया होगा दोस्तों, अपने एसएमएस के जरिए हमें जरूर बताइएगा। और ये जो खंड है आपके साथ है आरजे बोलिए, एंड आप अपने प्यार भरे एसएमएस हम पर बरसाना फिर से शुरू कीजिएगा। और इस खंड में भी हम ईश्वर की स्तुति गीत जो है वो जारी रखेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि रविवार के दिन हम ईश्वर के गीत सुनते हैं, उनकी आराधना करते हैं। इन गीतों के साथ आप हमारे साथ लगे रहिएगा और हमारा ये जो सफर है 7 बजे तक चलने वाला है दोस्तों। एंड यहाँ हितेंद्र जी का एसएमएस आया है, गुड इवनिंग आरजे कहाँ है उन्होंने। हितेंद्र जी आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ लगे रही। एंड मैंने सुना कि आपकी तबीयत खराब है, आप बीमार हो। मैं जानना चाहूंगी कि आप कैसे हैं इस वक्त, सब ठीक ठाक है कि नहीं। हमारी दुआ है, प्रार्थना है कि आप चंगे हो जाए, ठीक हो जाए, हमारे साथ लगे रहिएगा। चलिए इस खंड में हम सुनेंगे ईश्वर की स्तुति गीत जो कि मेलोडी जी फाना एन एच वन रिंग की ओर से है। तो सबसे पहले हम सुनेंगे एच वानलल रिंगा के आवाज में ईश्वर की स्तुति गीत करते हुए खुशियां मनाकर।

तो दोस्तों, इस खंड के लिए सबसे आखिरी गीत फिर से सुनने का वक्त आ गया है, और इस खंड का सबसे आखिरी SMS जो है आया है मॉरिस एलआर ख्यांगते की ओर से।

उन्होंने लिखा है, प्लेलिस्ट ए मोइले दोने पोनी से मिस जिनोद मिशन क्वायर लाते ही ने तो एम जाय पोल हरेम ते ही इतला कचा कम खोप मैं नेक्स्ट वीक उ तेतान करन लान रन ती आ ए पथियान फगने ला हिंदी ला ही मोइ तक तक मै ही तम मैया सिनोद मिशन क्वायर ते पोकन कोला मैरो सु हे नि तिन हियान इन सेगमेंट अकन प्लेलिस्ट तो ते ही लविन थाक आइन थाक दंग लंबे छिना आ कन प्लेफुल चांग ते ओमा प्लेफुल चांग ते ओम छिना मै रो छु दार क्वाले मिनि निया क्रोन किर ले दोना ता स्वान इन सिनोद मिशन क्वायर हे कन गाइ थ दोन ने ओ मोरिस मिनो चांग चर चर दोन ने जाय थियाम से अन जाय नुंग बॉक्स सी ते रो ngai tha ka cha kom bo ka milo ngai tha cho tur khan kan in so ma chan in o pcg sikai ran langa rj swal boy chi bai zan hun man nuam o next kha nang ma nang ma duty pretty tan ran ti app is just kai tan pun kan ran lan de ngal o तो चलिए मिलते हैं रात के 9:02 में और आप हमारे साथ लगे रहिएगा. इस खंड की सबसे आखिरी गीत हम सुनेंगे एजवान रिंग की ओर से एक बहुत ही प्यारा गीत गाएंगे ईश्वर की स्तुति गीत. तो चलिए इसी के साथ आप सभी से मैं अलविदा लेती हूं. आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM 100.7 आपके साथ है आरजे ज्वाल भाई.

नमस्ते, आकाशवाणी एफएम जो 100.7 में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ आरजे जवाल भई। आज का ये हमारा आखिरी खंड यहीं पर शुरू होता है दोस्तों। इस खंड में हम सुनने जा रहे हैं ईश्वर के बड़े ही प्यारे प्यारे स्तुति गीत। और उम्मीद करती हूँ अगर आप गिरजाघर गए होंगे तो फिर वापस अलौट हो चुके होंगे एंड हमें सुन भी रहे होंगे। चलिए, इस खंड में हम सुनने जा रहे हैं सिनोद मिशन क्वायर और दोरपुई वेंगथर मसी संगति जायपोल। सिनोद मिशन क्वायर ले दोरपुई वेंगथर मसी संगति जायपोल तेगन ngai thadona chuanin in SMS te kha ron thon de chur chur la inkhom te po kan ban to karinga thin khate chu la kanjir te po ni theya a thin te chu mani in lum lam kan pan sang sang to te po ni anga thing pui in pa te khani min lo ngai thla ola o in ril ru ve zong te pol thar na kan don te po kha aling fe kan ti kha kan han soi le dua kan chian dom tak तकते ओ जेल जाम ते जिस कई ते के वाल ते भी कुंग ते ते ले अंदर अदंग जोंग सोंग थे खा इनों लन हाल चुआई चुआई का कन बे से हाल टॉप में नी ओ इन आर जेस वाल बोई हियान इन इन एसएमएस क्यू तक तक ते खा लो हाँ ले तो ते में निया। तो चलिए, इस खंड की सबसे पहले शुरुआत हम करते हैं सिनोत मिशन क्वायर की ओर से। हम सुनेंगे आरू के पेड़ पर और इसके बाद बैक टू बैक प्ले होगा दोरपुई वेंगथर मसी संगति जायपोल की ओर से भारत देश महान। सिनोत मिशन क्वायर इन आरू के पेड़ पर ती फकनला अनरिम ही गंगाई था मसांगा चुआने मिजोहान दोरपुई वेंगथर कौशन मसी संगति जायपोल इन भारत देश महान ती ला अनरिम चुचुकन गई थाक सुन सोम दोनिया।

तो दोस्तों, आपने जो सुना वो था सिनोद मिशन क्वायर और दोरपुई वेंगथर गोवर्धन मसीह संगति की ओर से ईश्वर के स्तुति गीत। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जेरजा मंगे मई खोम बांग पोलना रोंदोंग थर्न सदेव न्यांगे रंजियाक तर ले दुआ तो मया आजिंग इजुआ मेल छलाउ जोंगन रंटिंग ये एमो ये प्यांग थर लो हे मिशिंग इजु हिंदी सेगमेंट ले ने लो हो दे तो एमोति लाइन कलो लो मन वियाउ सिन ले नेक्स्ट सॉन्ग ड्यूटी पुइ ने निन तान ले जोराम रिमो एफएम सो ओइंगा थतु ते तान ने कंट्रोल रूम ड्यूटी ते ले ड्यूटी ऑफिसर तान ने आजिंग इजुआ ली वीएलई मेल थजोंग मे लविनन रंते हाय आरजे वीएलई हिमो ई बोल थिया मे गति रु alim don hian ka sia mo jil zam pc jessica hian in rj zwal bai lo le le ta mo twang takin ho don ya next tan pc jessica hi ngai om ka tingoi ngai milo ngai thla reng ro and hitender das assam se likhte hain good evening rj ji rantya good evening dost ummeed karti hu aap sahi salamat ho theek ho hamare saath lage rahiyega and ke wal hian पते के वाल अरे सोई तुर वाने गई कश थियाम लु तुक से दिन मुन तुर हिमो आ इनखोम तम लो नि करिंग कट के वाल हि एतिन ये मी इनखोम लिम ते छु हे जेल जा मते अंग ते छु मो दोत दोत ले एंगे थुदिक मु मल पो नै लविन थाना रन राक लिया लिया मे मो ओले पोनी से नेक्स्ट टाइम सुनेंगे सिनोद मिशन क्वायर की ओर से ईश्वर के स्तुति गीत। और ये है जीवन जल। एंड उम्मीद कर इस वक्त जिन्होंने भी मुझे एसएमएस भेजा है एसएमएस में रोन तू जोंग सोंग तान खान इन कन रन लानेंगे। ओ सिनोद मिशन क्वायर की ओर से चले सुनते हैं जीवन जल।